मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 8 तारीख है और दिन है शनिवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्रीमती शिखा देखा और श्री हिमांता स्वर्गारी, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुत बर्मन, मनपो उद्घोषक है श्री लोपसा नोबू और मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे हामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में

0: उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज

0: इपको क्रिपको एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल

हमले में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में तीन लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे चंद शिव भजन। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंद शिव भजन। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेशे विभिन्न प्रांतों के आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे अरुण जमातिया और साथियों से चंद कोकबोरोक आधुनिक गीत। तो पेशे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अरुण जमातिया और साथियों से चंद कोकबोरुक आधुनिक गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांतिंग के 12वीं कक्षा में पढ़ रही छात्र छोटन पेमा से तवांग में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर अपने विचार साझा करते हुए सुनेंगे। तो पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: राशि दिलेक आकाशवाणी तावंग को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम छोटन देमा है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतिंग में 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आज आकाशवाणी तावंग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात के माध्यम से तावंग में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तावंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, बौद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ की मनमोहक वादियों, झीलों और मठों का आनंद लेने आते हैं। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापार और आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन बढ़ते पर्यटन के साथ कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी सामने आ रही है। प्लास्टिक, कचरा, जल स्रोतों का प्रदूषण, यातायात की बढ़ती समस्या और प्राकृतिक स्थलों पर बढ़ता दबाव हमारे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो तावांग की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। इसलिए हम सभी स्थानीय नागरिक, पर्यटक और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, कचरा निर्धारित स्थान पर डालें, जल और वन संसाधनों का संरक्षण करें तथा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि तावंग की सुंदरता और स्वच्छता को आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। जिम्मेदार पर्यटन के सतत विकास का आधार है। धन्यवाद।
0: इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त होता है।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं अब पेश है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल फिल्म से सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अगला गीत सुनते हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अगला गीत सुनते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इशात कामिल ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं अपेक्षे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत कार्यक्रम नारी संगीत का माफ कीजिए गीत मंजरी कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत सुनते हैं ऊंचाई फिल्म से नकश अजीज की आवाज में।
1: झुम झुकुम कुछ कुम झुम

अगला गीत सुनते हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म से तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अगला गीत सुनते हैं हीरोपंती फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अगला गीत सुनते हैं रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है कौशिक आकाश और गुड्डू ने।

अगला गीत सुनते हैं जब वी मेट फिल्म से, शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

अगला गीत सुनते हैं बागी फिल्म से मीट ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है मीट ब्रदर्स ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं एक विलेन फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

एक विलेन फिल्म की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी यही पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवां केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, अपेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित डीके दत्तर से वायलिन वादन। तो पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर करेगी इसकी पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों के सामने अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। शुक्रवार शाम ईटानगर के चिंपू स्थित वेस्टर्न रिसोर्ट के पास न्यू डंपिंग जोन में सड़क किनारे का स्लैब अचानक ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत और दो अन्य घायल। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई के 4 सक्रिय सदस्य ने अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वका सर्कल में भारत म्यांमार सीमा के पास असम राइफल के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पर्यटन उद्योगों और विशिष्ट पहचान को डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय ट्रैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख में शुरू हुआ। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि को अधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसकी पुष्टि करेगी। श्री खांडू ने कहा है कि उन्होंने नाह वेलफेयर सोसाइटी को पहले ही आमंत्रित किया है और वे स्वयं भी मामले की पुष्टि करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि तथ्यात्मक पुष्टि के बिना ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्र जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में नए क्षेत्रों में विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: शुक्रवार शाम अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर चिंपू स्थित वेस्टर्न रिसोर्ट के पास न्यू डंपिंग जोन में सड़क किनारे का स्लैब अचानक ढह जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए। पुलिस

श्रोता अभी आप सुन रहे थे पंडित डीके दत्तर से वायलिन वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम रागरंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर

सीआरपीएफ कर्मियों ने दो लोगों को बचाया है, जबकि एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए आरके मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय तामाबाजा के रूप में हुई है, जो कामली जिले के रागा स्थित दौन गांव का निवासी और वर्तमान में चंद्रनगर में ईटानगर में रह रहा था। मलबे से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। घायलों की पहचान कपवांग अरांगहम और अजय जेरांग के रूप में हुई है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई के चार सक्रिय उग्रवादियों ने लोंगडिंग जिले के वाका सर्कल में भारत म्यांमार सीमा के पास चुपखाओ ट्रैक क्षेत्र में असम राइफल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा लगातार समझाइश और संवाद के प्रयासों से उग्रवादियों को हिंसा छोड़कर राष्ट्र मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया गया, जो बिना किसी गोलीबारी या हताहत के पूरा हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पास से 4 पिस्तौल और 17 लाइफ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, उद्योग और विशिष्ट पहचान को डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के

0: मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया गया, जो बिना किसी गोलीबारी या हताहत के पूरा हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पास से 4 पिस्तौल और 17 लाइफ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, उद्योग और विशिष्ट पहचान को डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय अट्रैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख में शुरू हुआ। ये कार्यक्रम केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पहल के तहत उद्योग विभाग के सहयोग से और विश्व बैंक के वित्त पोषण से आयोजित की जा रही है। साथ ही यह आयोजन आरजीयू के जनसंचार विभाग के सेंटर ऑफ कल्चरल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य के आईपीआर मंत्री न्यातदुकाम, तेजू विधायक डॉ. मोहेश चाय, आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर शिवराज, नामपोंग विधायक लाइसेंस सिमाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन, भूमि राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से पासीघाट मुख्य बाजार में अभियान चलाते हुए सरकारी भूमि पर बनाए गए कई ढांचों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप में सभी सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के तहत अभियान जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग और घायल हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमेंस ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज सेमीफाइनल में अहमद वतन रक्षिता रामराज को हराया था। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय साशी या सहायक निकाय है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र की शक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर एक बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Apugapak. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the IIT Delhi to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। जरोखा में हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको अवगत कराते हैं आज के कार्यक्रमों से। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिलिन लेने में सुनिए लमा मैतो टशी और साथियों से शिलिन खिंचाक सुम्पा थपके थुजे मा और लामा छुपा सोकर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित

हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7 बजे। साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में सुनिए खंडो डोर समूह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग के जूनियर स्पेशलिस्ट ईएनटी डॉक्टर हम दोर्जी से ईएनटी यानी कान नाक और गले से संबंधित रोगों और उनके उपचारों पर हुई एक भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता है सिटिम याचिन। आज शाम 7:30 पर कार्यक्रम साज और आवाज आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम क्वामे तराने में सुनिए एआर रहमान से एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील आज रात 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन आज रात 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 आज रात 9 बजे। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं कल यानी 9 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ। तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए लामा करसंग और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिए हागे ताता और साथियों से चंद आपतानी आधुनिक गीत कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। तत्पश्चात महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल, रब्ता फिल्म से अतीफ असलम, गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी, रॉय फिल्म से मीट ब्रदर्स अंजान और कनिका कपूर, ओम शांति ओम फिल्म से के और आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। कल दोपहर 3:58 पर कार्यक्रम बाल जगत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा संतूर वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 4:45 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथल लिरिम के अंतर्गत सुनिए सेरू गांव के श्री लमा खंडू द्वारा क्याजोकोंजो और बेजा छिदुन उपन्यास का दूसरा भाग कल शाम 5 बजे। पांच बजकर 30 पर सुनिए श्री लोबसोंग नोबू द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम रिक्शुंग लिरिम। लिरिम सेरा शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति गीतों का कार्यक्रम शिल्दिन लिरिम में सुनिए लामा मेतोटशी और साथियों से शिल्दिन लामा छपा सोकर का शेष भाग। तत्पश्चात केपे मुन्नम लोसांग गेतिन मा सिमेन्दिन और मोआ मुन्नम कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं

अंग्रेजी में समाचार कल शाम 7 बजे। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम महफिल कवाली में आनंद लीजिए। दिल्ली 6 फिल्म से जावेद अली और कैलाश खेर और फिजा फिल्म से कदम गुलाम मुस्तफा, मुर्तजा गुलाम मुस्तफा, एआर रहमान और श्रीनिवास से चंद कवाली। तत्पश्चात 7:30 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपाठ। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए राजीव फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल शाम 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबाह पुराने फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन कल शाम 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 कल रात 9 बजे। कल रात 9:16 पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

मिटे मेप किलो हर्स के चिले नंगले थी मिटे के ठीक नंग खबर चिनिस नंग था नहीं का संयना ची उस लूं ठीक कंग तमंग शुद्धम पर संयना दा नब तो चजक रोक नंग का मखलों ने दा शेदम लेरम चित कुसो दो संयना दे शुद्ध लेरी मा लामा मेदो टो शिस क्रिस्ट नो शेदन जुन्चक सुंपा थर्की थुजे मा निंग लामा चे बाग चोकर सन्नांसा

走了我，听见部落新的灯光，电波云的那边，那是人有。

0: 아스라
1: 아멘.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को

0: मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductor, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion,

0: The Prime Minister also inaugurated a high-performance computing facility, Parampragya, at IIT Delhi. Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, today said that seafarers remain at the heart of India's maritime growth story and reaffirmed the government's commitment to ensuring that every seafarer is safe, respected and supported. Speaking at a national stakeholder interaction on seafarer security, safety and welfare in Mumbai, Mr. Sonowal said, India has emerged as one of the world's leading seafaring nations. On the occasion, eSamudra, a comprehensive digital maritime governance platform, was also inaugurated. The platform aims to provide seamless, transparent and citizen-centric services to seafarers, shipping companies, ports, service providers and other maritime stakeholders. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cybersecurity and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said, digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. He highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes. The Home Minister also launched a security operations center which will provide round-the-clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. Chief Justice of India Suryakant has stressed that justice must travel to the citizen rather than expecting citizens to travel to the justice system. He was addressing the inaugural session of the West Zone Regional Conference of the National Legal Services Authority in Indore today. The CGI said meaningful access to justice requires legal institutions to reach people who are unable to approach them. He noted that the three pillars of the conference, dialogue, dignity and inclusion, give practical meaning to the constitutional promise of equal justice. The 11th BRICS Culture Ministers meeting was held in Bhopal today under India's BRICS chairship. The meeting adopted the Bhopal Declaration aimed at strengthening cultural cooperation among BRICS member and partner countries. Representatives from 14 countries, including 10 BRICS members and 4 partner countries, took part in the meeting. The delegates discussed ways to promote cultural and creative industries. They also focused on creating more opportunities for artists. The meeting discussed using digital platforms to help artists reach wider markets. Protecting and restoring cultural heritage was another key focus. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that to implement the women reservation at the next general elections in 2029, the delimitation exercise needs to be undertaken at the earliest based on the latest available census figures as published. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं अपेक्षे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा, इसमें आज आप सुनेंगे खंडो डॉ सामो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग के जूनियर स्पेशलिस्ट ENT डॉक्टर हमदर्जी से ENT यानी कान नाक गला से संबंधित रोगों और उनके उपचारों पर हुई एक भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता है सिटिम याचिन। तो पेश है कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा।
2: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खंडो ड्रुवा जामु जिला अस्पताल तवंग के जूनियर स्पेशलिस्ट ENT डॉक्टर लामदुर्जी को। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ।
3: धन्यवाद।
2: श्रोताओं हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग की तरह हमारे कान नाक और गले में भी कई तरह की समस्या हो सकती है और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सांस लेने और निगलने से लेकर सुनने की क्षमता में कमी होने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और आज ENT जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लामदुर्जी से कान नाक और गले की बीमारियां और उपचार विषय पर चर्चा करेंगे।
3: जी धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब कान नाक और गले की समस्याओं को लेकर एक एक कर आपसे चर्चा करेंगे।

0: सबसे पहले हम कान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कान की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और ज्यादातर लोग कौन सी समस्या को लेकर आपके पास आते हैं?
1: तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट्स आते हैं तो मोस्ट कॉमनली आते हैं कान से गंदा निकलना या फिर पीप निकलना, फिर दूसरा होता है कान सुनाई नहीं देना, कान दर्द होना। तो ये सब तीन मेन सबसे ज्यादा पेशेंट्स लोग आते हैं। तो कान से जो पीप या फिर गंदा निकलना वो इसलिए होता है कि कान के अंदर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, उससे पहले जो बीमार होता है जो सर्दी कहते हैं, तो सर्दी होते वक्त AOM कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसमें नाक बंद रहता है, फिर नाक और कान का कनेक्शन जो है स्टेशन ट्यूब जो बोलते हैं वो कनेक्शन टूट जाता है, तो उसकी वजह से कान के अंदर जो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है वो कलेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होकर के पर्दा फट जाता है, तो पर्दा फटने के कारण वहां से कान से पीप निकलता है, तो उसके कारण ही कान सुनाई भी कम देता है। तो दूसरा लोग आते हैं कि कान सुनाई कम देना, तो कान सुनाई कम देना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, फिर दूसरा फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है जवान लोगों में होता है और बच्चों में होता है। तो कारण क्या है, जो कान हम लोग देखते हैं जो बाहर देखते हैं उसको पिन्ना कहते हैं, तो पिन्ना से अंदर जाकर के फिर सबसे पहले हमें पर्दा मिलता है। हमारे शरीर के सबसे छोटे छोटे तीन हड्डियां होते हैं जो मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं, तो वो तीन हड्डी होते हैं, ये तीनों हड्डियां जो है बाहर का साउंड को ट्रांसमिशन करके हमारे नर्व से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम ये पर्दा में या कान के हड्डी में होगा तो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। पर्दे में कुछ प्रॉब्लम है तो पर्दे का ऑपरेशन जो मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं, या फिर हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बाहर से पता नहीं चलता, वो सीटी स्कैन करना पड़ता है उसके लिए, तो सीटी स्कैन में अगर दिख जाए तो उसको फिर हम लोग ऑपरेशन करने लगे, ओसिकुलोप्लास्टी कहते हैं। तो ये सब ऑपरेशन करके जो जवान और बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो सकता है। फिर अलग जो है प्रॉब्लम वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, वो जो बुजुर्ग में होते हैं, तो बुजुर्ग में जब होते हैं तो वो यूजुअली ये कान का पर्दा या फिर हड्डियों में कुछ नहीं होता, तो उसके अंदर जो नर्व कहते हैं, जो नर्व वो जो ब्रेन तक पहुंचा तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कुछ ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, हियरिंग एड यूज करते हैं उसके लिए। तो हियरिंग एड क्या करते हैं कि वो छोटा छोटा साउंड को भी वो एम्पलीफाई करके बड़ा साउंड बनाते हैं, उसी से वो बड़ा साउंड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो फिर उसके बाद हुआ कान दर्द होना, तो कान दर्द जो क्यों होता है, अगर बॉयल यूजुअली हमारे शरीर में होता है तो हमारा चमड़ा जो है वो एक्चुअली स्ट्रेच कर सकते हैं, तो उसकी वजह से दर्द ज्यादा नहीं होता। तो कान में अगर जब ये बॉयल होता है तो कान में जो हमारे चमड़ा है वो चमड़ा ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाता, तो इसीलिए अगर छोटा सा भी बॉयल होगा तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण पेशेंट लोग आते हैं। उसको डायग्नोसिस कहते हैं हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसमें हमें पेन किलर भी यूज करना पड़ता है और एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है। तो कान में मोस्टली ये तीन ही है। इसको छोड़कर फिर पेशेंट्स आते हैं जैसे कान बजना, कान में कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, उसको इंग्लिश में हम लोग टिनिटस कहते हैं, जो कि ट्रीट करना थोड़ा तकलीफ होता है हर पेशेंट में। तो इसमें जरूरी नहीं कि कान में कुछ प्रॉब्लम होगा ही, तो उसमें सिर्फ कान में ही नहीं, अगर सिस्टमिक बोलेंगे तो पूरा शरीर में अगर कोई भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में, तो उसमें यूजुअली वास्कुलर कहते हैं, जो वास्कुलर हमारे जो खून जो पास होता है अपने शरीर में, आर्टरी वेन कहते हैं उसे, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर उससे भी कुछ, कान के अंदर जो है उसको जुगुलर बल्ब कहते हैं, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर उससे भी टिनिटस हो सकता है, तो उसमें ट्रीट करने के लिए तो फिर थोड़ा तकलीफ होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है अगर इफ इट इज वास्कुलर। तो अगर वो सब नहीं होगा, कभी कभी कान का पर्दा फटने की वजह से जब बाहर से हवा आता है तो उसमें भी ये कान बजना हो सकता है, तो उसके लिए कान का पर्दा का ऑपरेशन कर देंगे तो ठीक हो सकता है।
0: जी, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि ज्यादातर लोगों का कान का जो पर्दा है वो फटने से समस्या ज्यादा होती है, तो ये जो कान के पर्दा अगर एक बार फट जाते हैं तो उसका कोई उपचार है, इसका इलाज हो सकता है?
1: जी, ठीक किया जा सकता है पर्दा को, उसको मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। तो फिर मेरिंगोप्लास्टी भी अलग अलग तरह का होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है और दूसरा होता है एंडोस्कोपिक, जिसमें कैमरे से हम लोग देख करके अंदर ही ऑपरेशन करते हैं, बाहर पे कुछ काटवाट कुछ नहीं करते हैं। जिस कान का एक नकली पर्दा जो लगाते हैं उसके लिए छोटा सा काटा जाता है, वो कान के जस्ट पीछे में आपके हेड की तरफ काटा जाएगा, फिर वहां से नकली पर्दा जैसे छोटा सा निकालेंगे उतना ही कटेगा, फिर बाकी सब कुछ होगा इंस्ट्रूमेंट से, जो एंडोस्कोप से लेकर के कैमरा से लेकर के पूरा कान के अंदर होगा, बाहर कुछ नहीं कटेगा, और ये ठीक किया जा सकता है। कान का पर्दा जो है तवांग में भी ऑपरेशन होता है, मैंने अभी तक कान का पर्दा ऑपरेशन लगभग 25 जैसे किया है यहाँ पे तवांग में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2-3 लोगों का सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम जैसे ऑपरेशन के कुछ भी सही नहीं हुआ, सक्सेस मतलब पेशेंट की तरफ से सक्सेस नहीं हुआ, जैसे बोल रहे हैं वो लोग, जितना वो लोग सोच रहे थे कि जितना सुनाई देना चाहिए ऑपरेशन के उतना सुनाई नहीं दे रहा, तो वो एक्चुअली सक्सेस नहीं हुआ नहीं है। मैं सिर्फ ऑपरेशन करके डॉक्टर का ही सिर्फ काम नहीं रहता, उसमें पेशेंट अपने आप को भी वो केयर करना पड़ता है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद पानी नहीं जाना।

0: करना है कान के अंदर, फिर हाथ से नहीं खुजाना है, फिर कुछ सामान डाल करके नहीं खुजाना, ये सब अगर ठीक से वो लोग केयर करेंगे तो सक्सेस रहेगा।
1: जी, जो बुजुर्ग है उसमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है तो आप
0: हियरिंग एड
1: लगाते हैं जी, तो वो हियरिंग एड जो है वो कितने समय तक वो टिकाव रहते हैं, उसको समय समय पर बदलना पड़ता है या फिर वो एक बार लगाने के बाद बहुत समय तक चलता है?
0: हियरिंग एड भी एक्चुअली तरह तरह का होता है, जैसे हमारा नजर थोड़ा कमजोर हो जाता है तो जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं तो वो चश्मा भी हर किसी का सेम नहीं रहता, तो उसमें भी अलग अलग पावर रहता है। उसी तरह हमारे कान का भी सुनने की क्षमता जो है उसको चेक किया जाता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं, जिसको ऐसे बंद कमरे में चेक किया जाता है कान कितना सुनाई दे रहा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में चेक किया जाता है, उसके ही मुताबिक हमारे हियरिंग एड को भी डिजाइन किया जाता है। फिलहाल हमारे तवांग में है नहीं हियरिंग एड वाला कोई दुकान, तो मैं यूजुअली वहाँ पे गुवाहाटी कॉन्टेक्ट करके जब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ उसको रिजल्ट को मैं गुवाहाटी भेजता हूँ, तो भेज करके फिर अगर पेशेंट खुद चाहते हैं तो उसमें अलग अलग रेट का रहता है, फिर हियरिंग एड भी ज्यादा रेट का जो है वो अच्छा रहता है, फिर कम रेट का कम होता है, तो वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली मैं मंगा देता हूँ। और इसका कब तक चलता है तो ये बैटरी सिस्टम है हमारे फोन की तरह ही है, जैसे हम लोग अगर ज्यादा यूज करेंगे तो फोन भी ज्यादा डिस्चार्ज होगा, वैसा ही अगर दिन भर में आपने यूज किया फिर रात में सोते समय खोल के रख दिया तो वो ज्यादा चलेगा, वो बैटरी के ऊपर है।
1: और शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है कान, ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। अक्सर हम देखते हैं परे या भाई बहनों में जब लड़ाई हो जाते हैं या फिर दोस्तों में लड़ाई हो जाते हैं तो वो थप्पड़ लगा देते हैं, तो उससे कान को भी नुकसान पहुंचते हैं, उससे चोट उनको लगते हैं कान के अंदर, तो इससे क्या खतरनाक हो सकते हैं? कभी कभी डॉक्टर के पास जाने की भी नौबत आ जाती है।
0: जी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि कहीं आप किसी से झगड़ा करके किसी ने थप्पड़ मारा, या फिर आप खेलते समय बॉल से लग गया या फिर हाथ से कहीं लग गया, तो उसमें ट्रॉमेटिक परफोरेशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी का एक्चुअली बहुत ज्यादा वो क्षमता होता है कि खुद खुद से हील करें, तो जब भी हमें कुछ छोटा मोटा बीमार होते हैं तो बॉडी सबसे पहले यही ट्राई करता है कि वो खुद खुद से हील करें। तो ट्रॉमेटिक परफोरेशन में बहुत टाइम ऐसे होता है कि खुद खुद से हील हो जाता है, आपको ना ऑपरेशन की जरूरत होता है ना कोई मेडिकेशन का जरूरत होता है, ये खुद खुद से हील हो जाता है।
1: जी, ऐसा भी अक्सर हम देखते हैं कि कान को हम साफ करने के बावजूद उसमें कुछ वैक्स रह जाते हैं, बाद में वो काला होकर बहुत बड़ा बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
0: जी, जैसे मैंने बताया हमारे जो स्किन है, चमड़ा है, जो चमड़ा आज देख रहे हो ये 5-10 साल पहले ये चमड़ा ये नहीं था, तो इसमें जो बोलते हैं चमड़ा चेंज होता है, जैसे सांपों में होता है चमड़ा चेंज होता है उनका, तो वैसे ही चमड़ा हमारा भी चेंज होता है जो हमें दिखता नहीं है, तो वैसे ही कान के अंदर भी पर्दा है, पर्दा तक वहाँ पे चमड़ा है, तो वो चमड़ा भी टाइम टाइम में चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज होते समय वो वैक्स के तौर पे निकलता है। तो हम लोग जैसे अभी नॉर्मली अभी भी आप अगर कान के अंदर उंगली डाल करके देखेंगे तो थोड़ा बहुत गंदा तो निकलेगा ही, वो बिल्कुल नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब होता है? जब ये वैक्स खुद खुद से बाहर नहीं निकलता, जब ज्यादा जम जाता है तो उसके बाद ये कलर भी इसका चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, उसको हम लोग इम्पैक्टेड वैक्स कहते हैं। अगर फिर ईयर केनाल सब बंद हो गया तो उसमें कान सुनाई भी कम देगा, तो उसके लिए कुछ सर्जरी तो करना नहीं पड़ता, जस्ट हमें वैक्स सील करके ईयर ड्रॉप रहता है जिसमें ऐसा दवाई होता है जिससे ये जो हार्ड हो जाता है वैक्स जो वो उसको नरम कर देता है, तो नरम करने के बाद उसको इजीली हमारे ओपीडी में अगर आते हैं तो उसमें सिरिंज से पानी डाल करके उसको वैक्स को आराम से निकाला जा सकता है, उसके लिए कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं होता।
1: जी, और जैसा कि आजकल हम देखते हैं जो नौजवान है ईयरफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी नुकसान हो सकते हैं कानों को?
0: जी, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम होते जाता है वैसे हम लोगों को ह्यूमंस को भी चेंज होना पड़ता है, तो यूज करना हानिकारक तो नहीं है बट देन सुबह शाम हर वक्त लगा के रखना और लाउड साउंड सुनना ये हानिकारक हो सकता है, तो इसको केयर करना चाहिए। अगर यूज करते भी है तो ज्यादा यूज ना करें, अगर यूज करते भी है तो उसमें बहुत ज्यादा लाउड साउंड यूज ना करें, थोड़ा नॉर्मल साउंड यूज करें, जितना हो सके कम यूज करें, क्योंकि इसको बिना यूज किए तो हम लोग नहीं रह सकते।
1: जी बिल्कुल, और बहरापन जो है वो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। एक तो है कि सामान्य उम्र के बाद बहरापन आता ही है, लेकिन कोई कोई जन्मजात से ही बहरा होता है, तो इसका जो जांच है वो आप किस तरह से करते हैं, वो बहरा है कि नहीं?
0: जैसे बच्चे डिलीवरी होने के साथ साथ अगर जांच करना होगा तो यूजुअली हम लोग लाउड साउंड्स यूज करते हैं, ये इनफॉर्मल हो गया, तो इनफॉर्मली हम लोग ऐसे यूज करते हैं जो कुछ ताली बजाकर या फिर बच्चे के कान के सामने कुछ साउंड करना, तो उससे बच्चे रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखते हैं, तो उसमें अगर रिएक्ट करते हैं बच्चों कान सही है हम मानते हैं, फिर अदरवाइज अगर मशीन से यूज करते हैं तो हमारे ऑटो एकॉस्टिक इमिशंस करके एक मशीन रहता है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, बट हमारे पास ये ऑडियोमेट्री का ये रूम नहीं है इसीलिए नहीं करते हैं अभी। फिर दूसरा होता है बेरा, ब्रेन स्टेम एवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री करके होता है, तो वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए फिर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑडियोलॉजिस्ट भी

0: सकते हैं, बट देन बराबरा सेंटर्स में ही है, हमारे यहाँ पे नहीं है। और उससे ज्यादा अगर जस्ट डिलीवरी के बाद ही नहीं, कभी कभी पेशेंट पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को 3-4-5 साल के बाद, बोलते हैं कि ये बच्चों को शायद सुनाई नहीं दे रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कंजिनेटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसके लिए एक्चुअली वो लोग इसलिए लेके आते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि बच्चों, जैसे हम लोग कॉमन टर्म में बोलते हैं बुद्धू हो गया, तो बुद्धू एक्चुअली बुद्धू वो नहीं है। बुद्धू क्यों है कि जैसे हम लोग बचपन में कैसे सीखते हैं, हम लोग कुछ सुन के सीखते हैं, जैसे हम लोग लैंग्वेज सीखना, जैसे मैंने मनपा सीखा, मैंने माँ पिताजी को मनपा करते हुए सुना इसलिए मैंने मनपा सीखा, फिर मैं तमिलनाडु में गया, मैंने लोगों को तमिल बात करते हुए सुना इसलिए सीखा। तो बचपन में अगर जिसको सुनाई नहीं देता है तो वो कुछ सुनते नहीं है, तो कुछ सीखते नहीं है, तो उसकी वजह से उनको बुद्धू कहलाता है, बोलने में भी बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, अगर 5 साल के अंदर तक अगर बच्चों को कंजेनिटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर डायग्नोस्ड है तो उसमें कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं, तो वो तो हमारे अरुणाचल में होता नहीं है। अगर कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसका इम्प्लांट का ही 10 लाख रहता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो अभी नहीं आया हमारे अरुणाचल के, लेकिन अदीप स्कीम करके एक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उसके अंदर ऑपरेशन फ्री में होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने कानों की समस्या और इसके इलाज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है, और आप मैं नाक के ऊपर आना चाहूंगी, तो नाक की भी बहुत सारे समस्या होते हैं, जैसे कि मौसम बदलने के साथ बहुत से लोगों को एलर्जी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका असर आवाज पर भी पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसका इलाज कैसे हो सकता है?
0: जी, नाक का समस्या जो जो पेशेंट्स लेकर के आते हैं उसमें पहला है नाक बंद रहना, और दूसरा पेशेंट्स आते हैं नाक से पानी निकलना या फिर छींक आना, जिसको हम लोग एलर्जी कहते हैं, दूसरा और तीसरा है साइनसाइटिस, जो कॉमन टर्म में हम लोग साइनस कहते हैं, फिर बच्चों में यूजुअली होता है ये नाक से खून निकलना, जिसको हम लोग एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो नाक बंद होना वो तरह तरह के कारण हो सकते हैं उसमें, जैसे हम लोगों के दो नाक के बीच में एक हड्डी रहता है, तो नाक की हड्डी कहते हैं, तो अगर वो टेढ़ा होता है तो वो सीधा नहीं होने से भी नाक बंद हो सकता है। तो उसके साथ साथ में नीचे इन्फीरियर टर्मिनेट कहते हैं हमारे नाक के अंदर है, जो लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मेरे नाक में कुछ बड़ा सा मीट निकल गया है, तो वो एक्चुअली इन्फीरियर टर्मिनेट कहते हैं उसको, वो अगर बड़ा हो जाता है तो नाक बंद हो जाता है। और दूसरा हो गया एलर्जी, एलर्जी जो है सीजनल होता है, तो यूजुअली अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे में होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स फ्लाई होता है, तो उसमें पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि साल साल में यही समय में बार बार ये सब सिम्टम्स आता है, जिसमें एलर्जी में क्या क्या होता है, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी निकलना, फिर नाक और आंख खुजली होना, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम्स है, जिसका एक्चुअली एलर्जी को क्योर नहीं किया जा सकता बट कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें जब आपको ये सब सिम्टम्स हो जाए तो मेरे पास अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो मैं ट्रीटमेंट अगर लिख दूंगा तो आप ये यूज करेंगे तो 1 साल जैसा तक फ्री रहेंगे सिम्टम्स से, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर साल भर आपको ये सब से जूझना पड़ेगा। फिर थर्ड हो गया साइनसाइटिस, कॉमन टर्म में हम लोग साइनस कहते हैं, जो एक्चुअली ये साइनसाइटिस जो है क्यों होता है, हमारे ये सर की हड्डी जो है, चेहरा और सर पूरा मिलाकर के जो हड्डी है, ये पूरी तरह हड्डी नहीं है, तो इसके अंदर एक होलो स्पेस रहता है, जो बिना हड्डी का जगह रहता है जिसमें हवा भरा रहता है, तो उसको साइनस कहते हैं। तो अगर ये साइनस अगर कुछ प्रॉब्लम है, नाक बंद रहना, सर्दी होना, इसकी वजह से अगर ये साइनस ब्लॉक हो गया, फिर साइनस के अंदर पानी कलेक्शन हो गया, फिर सबसे पहले पेशेंट को ये सर भारी लगने लगता है, तो सर भारी होता है, फिर सर दर्द होता है, तो ये सब साइनसाइटिस में होता है। तो इसके लिए पहले तो मेडिसिन दिया जाता है, तो अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जरी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। फिर लास्ट है जो बच्चों में होता है मोस्टली एपिस्टेक्सिस कहते हैं, जो नाक से खून निकलना, तो बच्चों में तो बहुत कॉमन रीजन तो यही है कि बच्चे बार बार हाथ डाल करके नाक साफ करने के लिए करते हैं, उसमें जो इंजरी कर देते हैं उसकी वजह से ही होता है। और उसको छोड़ करके फिर टोन्सिल जैसा ही हमारे नाक के पीछे एक एडिनोइड बोल करके होता है, तो अगर एडिनोइड बड़ा हो जाता है तो नाक बंद होता है, फिर वहां से खून भी निकलता है। और दूसरा नाक में स्प्रे यूज करने के लिए होते हैं, वो स्टीरॉइड का स्प्रे होता है। और तीसरा जो है गर्मी जो हम लोग कर सकते हैं वो स्टीम इनहेलेशन, जो गर्म पानी का भाप जो निकलते हैं उसको सूंघना है हमें सुबह शाम को, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगा।
1: जी, घरेलू नुस्खा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: इसके बाद मैं गले पर आना चाहूंगी, तो गले को लेकर कौन कौन सी समस्या होती है, जैसे हम अक्सर देखते हैं गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाती है, गले में खराश हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है और इसके लिए एहतियात क्या क्या चाहिए कि हमारी गला ना बैठे?
0: जी जी, तो गले में जो जो समस्या रहता है वो बाहर से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जीभ के पीछे हमारा टोन्सिल रहता है, तो टोन्सिल अगर टोन्सिल में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो टोन्सिलाइटिस कहते हैं, जो वो तरह तरह का होता है, फिर फोलिकुलर टोन्सिलाइटिस, मेम्ब्रेनस टोन्सिलाइटिस,

0: अगर टॉन्सिल ज्यादा होगा तो फिर लोगों को निकलने में दर्द होगा, बुखार भी होगा, फिर उसके बाद कभी कभी पूरा शरीर भी दर्द होने लगता है, फिर सर दर्द भी होने लगता है, तो ये टॉन्सिल में ये सब हो सकता है। फिर टॉन्सिल के जस्ट पीछे अगर जाएंगे तो हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, जो फेरिंजाइटिस, तो उसमें टॉन्सिल तो बड़ा नहीं होता लेकिन सिम्टम्स सब टॉन्सिल जैसा ही होता है। फिर अगर उससे नीचे जाएंगे तो हम लोग लेरिंजाइटिस कहते हैं, लेरिंग्स अगर कुछ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो लेरिंग्स में अगर हो गया तो लेरिंजाइटिस, उसमें आपको गला दर्द कम रहेगा बट आपका आवाज बैठ जाएगा। तो उसमें लरिंग्स के अंदर ही हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है, जो आवाज का ये बॉक्स जो कहते हैं, तो उसमें अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया तो आपका आवाज बैठ जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको ओपीडी में डायरेक्ट टॉर्च लाइट से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए इंडोस्कोप से देखा जाता है। तो वो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है जिससे हम लोग देखते हैं और आपको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट उसके लिए भी दिया जाता है।
1: और डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं जब लोगों की नाक बंद हो जाता है, गला बैठ जाता है या फिर टॉन्सिल की शिकायत रहती है, तो फार्मेसी से जाकर दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर के सलाह और प्रेस्क्रिप्शन के, तो ये कहाँ तक सही है? और जब फार्मेसी से दवाई लेकर जब वो ठीक नहीं होते हैं तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक सुरक्षित है?
0: जी जी, अगर सही में बोले तो अभी कुछ भी अगर छोटे से छोटे समस्या भी आपका हो तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट सीधा जाके फार्मेसी से दवाई ले लिए, सीधा जाकर के खा लिए, उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैंने कुछ फार्मेसी से दवाई खाया था बट ठीक नहीं हुआ, तो जब मैं पूछता हूँ तो कौन सा दवाई खाया था, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा दवाई खाया। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर डॉक्टर्स के पास, मान लीजिए आपने कोई टेबलेट खाया फिर वो उससे ठीक नहीं हुआ, फिर आप डॉक्टर्स के पास आए, फिर डॉक्टर ने पूछा आपको कौन सा दवाई खाया, आपको पता नहीं, फिर आप डॉक्टर ने वही दवाई लिख दिया, तो आपका ठीक होने का चांस थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप पहले डॉक्टर को दिखाएं फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें।
1: और अपने कान नाक और गले के लिए उपचार के लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी।
0: जी, उसके लिए तो मैं पहले जो डीसी था हमारा संगभुंसो सर और हमारा पहले जो डीएमओ सर थे वांग डी सर, उन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था दोनों सर ने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए एक्चुअली, तो उस मीटिंग में मुझे बोला गया था कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जो चाहिए सामान उसका लिस्ट बना करके हमें दे दें। और जब मैंने लिस्ट बना करके दिया तो दोनों सर ने इतना अच्छे से पूरा इक्विपमेंट्स सब इंस्ट्रूमेंट्स को विद इन 6 मंथ्स के अंदर सब लेकर के मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से मैं अभी बहुत सारा ऑपरेशन कर सक रहा हूँ यहाँ पे, जबकि तवांग बहुत दूर है हमारे मेनलैंड से। अगर यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग पेशेंट यहाँ से सबसे नजदीक तो तेजपुर जाना पड़ता है जो 330 किलोमीटर से यहाँ से, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सर दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे कान में बोलेंगे तो यहाँ पे यूजुअली कान का ऑपरेशन होता है माइक्रोस्कोप से और एंडोस्कोप से, तो दोनों ही हमारे पास है यहाँ पे, अच्छा कंपनी का माइक्रोस्कोप है। एंडोस्कोप भी कार्लस्टोस जो बहुत कॉस्टली रहता है, 40 लाख का रहता है, वो एंडोस्कोप भी है हमारे पास, जो कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अरुणाचल में कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है बट यहाँ पे है। तो कान का ऑपरेशन जो होता है वो आजकल कुछ काटना वाटना कुछ नहीं होता है, जस्ट एंडोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, सब कुछ अंदर ही होता है, तो इसीलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑपरेशन कराना होगा तो यहाँ पे सब कुछ हमारे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भी ऑडियोमेट्री है, सीटी स्कैन है, सब कुछ है, तो यहाँ पे करके हम लोग ऑपरेशन यही करते हैं। फिर नाक का भी हम लोग यूजुअली पहले जो होते थे ओपन साइनस सर्जरी बोलते हैं, नाक का काट के खोलना वो सब होता था, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में ये सब नहीं होता, ये सब फिर एंडोस्कोप से ऑपरेशन होता है, जो एंडोस्कोप हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है यही यूज होता है, तो सब कुछ ऑपरेशन यहाँ पे हो जाता है। जैसे नाक से मीट निकलना जो बोलते हैं लोग, पॉलिप कहते हैं यूजुअली, वो एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं नाक के अंदर, वो सबका भी ऑपरेशन हमारे यहाँ होता है। फिर गले का बोलेंगे तो हमारे टॉन्सिल जो बच्चों में होता है, एडल्ट में भी होता है, बड़ों में भी होता है बट बच्चों में ज्यादा होता है, तो टॉन्सिल का भी ऑपरेशन करने का सब सामान है हमारे पास। टॉन्सिल का ही नहीं, गले का अलग ऑपरेशन भी, जैसे कहीं एक्सीडेंटली गले में कुछ कट आ गया या फिर गाय का बुलगोर से लग गया, ऐसे कुछ होगा तो उसके भी ऑपरेशन होते हैं, ट्रकिस्टमी जो बोलते हैं, उसका भी हमारे पास सब सामान है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे और भी बहुत सारी जानकारियां लेनी थी लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो जो समय आज आप निकल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को कान नाक और गले से संबंधित क्या क्या समस्या होती है और इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे KDS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग के जूनियर स्पेशलिस्ट ENT डॉक्टर हमदोजी के साथ ENT से संबंधित रोगों और उनके उपचारों पर हुई।

एक भेंटवार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, अब पेश है धुनों और गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज। कार्यक्रम साज और आवाज का पहला धुन सुनिए फिल्म जोधा अकबर से।

याराना फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम साज और आवाज यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहे।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा कि वे अपने फैसले में देश हित को सबसे ऊपर रखें और खुद से पूछें कि उनके कामों से देश को क्या फायदा हो सकता है और वे देश की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी को अपने समय की खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। श्री मोदी ने कहा है कि डिग्री लेने वाले छात्र अगले 30 से 35 सालों में जो काम करेंगे उसका देश के विकसित भारत बनने के सफर पर बहुत असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के दौर में ध्यान भटकने की समस्या के बारे में भी बात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोहराया है कि सरकार भारत के शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये बात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। ये बैठक 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक से नई दिल्ली लौटने के बाद आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अपर सुबनसिरी जिले के तकसिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसकी पुष्टि करेगी। श्री खांडू ने कहा है कि उन्होंने नाव वेलफेयर सोसाइटी को पहले ही आमंत्रित किया है और वे स्वयं भी इस मामले की पुष्टि करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि तथ्यात्मक पुष्टि के बिना वे ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में

0: पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल के साथ राज्य की कानूनी व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में राज्य के मौजूदा सुरक्षा वातावरण, अपराध रोकथाम के उपायों, जन सुरक्षा, आपदा से निपटने की तैयारियों तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस की समग्र तैयारियों और तत्परता पर चर्चा की गई। सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री दसांग लुपोल ने आज राज्यवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के 5वें संस्करण को पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है। यह अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अपने संदेश में मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है क्योंकि वे वंदे मातरम के 150 वर्ष भी मना रही है। उन्होंने ये कहा है कि अभियान देशभक्ति, एकता और स्वतंत्रता के स्थायी आदर्शों को दर्शाती है। ईटानगर में रविवार को दोपहर 3 बजे न्योकुम लापंग ग्राउंड से आईजी पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी शामिल होंगे। शुक्रवार शाम ईटानगर के चिंपू स्थित वेस्टर्न रिजॉर्ट के पास न्यू डंपिंग जोन में सड़क किनारे का स्लैब अचानक ढह जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने 2 लोगों को बचाया है, जबकि 1 व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों का इलाज इस वक्त आरके मिशन अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय तामाबाजा के रूप में हुई है, जो कमले जिले के रागा स्थित डॉन गांव का निवासी है और वर्तमान में चंद्रनगर ईटानगर में रह रहा था। मलबे से एक स्कूटी भी बरामद की गई है और अन्य घायलों की पहचान कापुआंग अरांगहम और अजय जेरांग के रूप में की गई है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों क्रादादी, शियोमी, सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिवांग वैली, लोहित और नामसाई को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, उद्योगों और विशिष्ट पहचान को डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय अट्रैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख में शुरू हुआ। ये कार्यक्रम केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पहल के तहत उद्योग विभाग के सहयोग और विश्व बैंक की वित्तीय पोषण से आयोजित की जा रही है। साथ ही आयोजन आरजीयू के जनसंचार विभाग के सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के सहयोग से भी की जा रही है। कार्यक्रम में राज्य के आईपीआर मंत्री ज्ञातदुकाम, तेजू विधायक डॉक्टर मोहेश चाय, आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर शिवराज, नामपोंग विधायक लाइसम सिमाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। भूटान से आए पानी के कारण लोअर असम में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि अपर असम के कुछ हिस्से, विशेषकर नागालैंड सीमा से लगे गोलाघाट जिले में भी स्थिति और खराब हो गई है। पिछले 24 घंटों में गोलाघाट और उदालगुड़ी में बाढ़ से 2 और लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 15 जिलों में अब भी 155,849 लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, इसके बाद शिवसागर और जोरहाट जिला सामने आते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय अपुगापक। Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology Delhi to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said every generation faces the specific challenges of its time and carries its own national responsibility. He said the work undertaken by the graduating students over the next 30 to 35 years will have a significant bearing on the country's journey towards a Viksit Bharat. Modi also spoke about distractions in the age of social media. The Central Bureau of Investigation, which recently filed a charge sheet against 13 accused persons in the NEET undergraduate 2026 paper leak case, has alleged that the subject matters experts engaged by the National Testing Agency leaked questions through handwritten notes, following which they were circulated via digital messaging platforms. The accused persons included Manisha Sanjay Havaldar for physics, Manusha Gurunath Mandhare for biology, and P.V. Kulkarni for chemistry. During the investigation, the agency identified certain WhatsApp groups, including one named FIFA World Cup 2026, which were allegedly used to connect with candidates, the

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम क्वामे तराने। इसमें आज आप सुनेंगे ए आर रहमान से एक देशभक्ति गीत।

एआर रहमान के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम क्वामे तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे है। श्रोताओं अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज के इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है नरगोडा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी से। इन्होंने फरमाइश किया है समाधि फिल्म से गीत लता मंगेशकर और अमीरबाई कर्नाटकी के आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

कार्यक्रम का अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है। दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा से, और हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश के जगदीश ठाकर, रंजूभाई ठाकर, युवराज सिंह ठाकर और शिवांगी ठाकर से इन्होंने फरमाइश किया है। कूली नंबर वन फिल्म से यह गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिन ने।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है जलालाबाद वेस्ट के सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहुजा से। इन्होंने फरमाइश किया है, आपकी कसम के फिल्म से आया गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत का, जिसके तहत हमने पेश की आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुर की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत का नाम और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हंसी यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:15 हो रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित इस सप्ताह संसद में। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणाचल न्यूज रील।
1: आकाशवाणी ईटानगर प्रेजेंट्स अरुणाचल न्यूज रील। First, the top stories of the week. The Central Bureau of Investigation, which recently filed a charge sheet against 13 accused persons in the NEET UG 2026 paper leak case, has alleged that a subject experts engaged by the National Testing Agency leaked questions through handwritten notes, following which

0: 4 pistols along with 17 rounds of live ammunition from the surrendered operatives. Takam Jyoti and Adi Natung from Arunachal Pradesh won a silver medal and a bronze medal respectively at the prestigious Batumi Open International Wushu Tournament held in Batumi, Georgia from 30th July to 3rd of August. Congratulating the players on their outstanding performance, Deputy Chief Minister Chanman has wished both players continued success, many more laurels and greater accomplishments in the years ahead. The East Siang District Administration has launched an eviction drive to free government land in Pasighat Urban Town from unauthorized occupation. On Thursday, the District Administration, the Land Revenue Department and the police conducted a joint eviction drive at Pasighat Main Market and evicted several structures constructed on government land. Officials said that the eviction drive will continue till all government lands in the township are freed from encroachment. The Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh on Wednesday donated ₹3.16 lakh to the district administration to support relief and rehabilitation efforts in East Siang district. The check was formally handed over to the Deputy Commissioner East Siang, Sonalika Jivani. Receiving the contribution, the Deputy Commissioner thanked IFCSAP for its generous humanitarian gesture and acknowledged the organization's commitment towards community welfare. She stated that such collective efforts will strengthen relief initiatives and provide meaningful assistance to families striving to rebuild their lives after the disaster. Minister for Education P.D. Sona launched the official WhatsApp channel for DIPRO Shiyomi, a dedicated platform for disseminating timely and authentic information to the public. In a social media post, Sona informed that the channel will serve as a reliable source for government notifications, public advisories, development updates, welfare schemes, important announcements and other vital information concerning the district. In the meantime, the minister has urged all citizens of Shiyomi to join the channel and stay in from true official and verified updates. That's all in this edition of Arunachal News Reel. This edition was produced by the Regional News Unit of Akashwani Itanagar, presented by Pinky Michi and assisted by Tika Prasad.
1: Namaskar. मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं प्रशांत. प्रशांत नमस्कार.
2: नमस्कार धर्मेंद्र.
1: तो स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत. हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ. तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात और शुरुआत हेडलाइंस के साथ.
2: यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला. अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची. कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए. डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ई में लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया और नाखोन पाथुम में एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीते.
1: तो सबसे पहले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान पर. अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला. आशीष ने तीसरे दौर में 74.09 मीटर का थ्रो फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया. सुनते हैं ये रिपोर्ट.
3: जब हौसला बुलंद हो तो हवा का रुख भी मोड़ा जा सकता है और यही साबित किया भारत के जेवलिन थ्रो की नई उम्मीद आशीष यादव ने. वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में दबाव चरम पर था, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 19 वर्ष के जांबाज आशीष ने ऐसा आसमानी थ्रो किया कि सभी देखते रह गए. उनके 74.09 मीटर के थ्रो ने भारत की झोली में इस साल का पहला मेडल डाल दिया.
4: Is Yadav
5: into the javelin then? Yadav in sixth at the moment. He's capable of more than sixth, and that has leapfrogged him up to second. Much, much more like it. 74.09, and he'll be feeling much better about that one.
3: ये सिर्फ एक सिल्वर मेडल नहीं, एक

0: बड़ी विरासत की गूंज है। इसी प्रतियोगिता में 2016 में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के ठीक 10 साल बाद आशीष यादव अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पोडियम पर खड़े होने वाले दूसरे भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज ने 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था और रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक नहीं टूटा है। खुद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी ट्वीट कर आशीष को इस बड़ी सफलता की बधाई दी। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते और जीतते देखना हमेशा एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक जेवलिन थ्रोअर के तौर पर यह मेरे लिए थोड़ा और खास है। अंडर 20 में आपके रजत पदक पर मुझे बहुत गर्व है आशीष। आशीष का रजत पदक जेवलिन की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। जेवलिन देश में सबसे तेजी से उभरता हुआ खेल है। नीरज चोपड़ा के अलावा भी कई युवा थ्रोअर इस खेल में आगे आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत रहे हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश में जेवलिन के प्रति नई जान फूंकी थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश और भारतीय सेना के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर धर्मेंद्र, इसी प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत के मोहम्मद अशफाक 46.20 सेकंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डेलॉन ने 44.47 सेकंड के साथ स्वर्ण और किन्सी विल्सन ने रजत पदक जीता। महिलाओं की हाई जंप में पूजा ने 1.79 मीटर के साथ फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान और जितिन अर्जुन ने फाइनल में जगह बना ली है। उधर महिलाओं की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में पूनम अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप में 8वें और कुल 13वें स्थान के साथ फाइनल में जगह नहीं बना सकी।
2: जी, और अब ट्रैक एंड फील्ड से चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ। भारत की अश्मिता चालिया कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने अपने साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। ये रिपोर्ट सुनते हैं।
3: भारत के दो युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा के भिड़ंत कल चीन की हान किया नक्सी से होगा। अश्मिता के लिए यह मुकाबला कठिन हो सकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कांटे के मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। अश्मिता ने कल जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हीना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उधर पुरुष डबल्स में पृथ्वी के रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी के सामने पराजित हो गई। मलेशिया के मैन वेई चोंग और सो वुई यिक ने 21-7, 21-8 से बेहद आसान जीत हासिल की। कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइस फंड 2.5 लाख अमरीकी डॉलर है। यह टूर्नामेंट 2007 में शुरू हुआ था और 2010 तक इसे इंटरनेशनल चैलेंज लेवल टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में इसे BWF ग्राम प्री गोल्ड इवेंट में बदल दिया गया। साल 2017 में ग्राम प्री गोल्ड इवेंट बंद होने के बाद कोरिया मास्टर्स BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा बन गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: धर्मेंद्र, अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। दक्षिण कोरिया 18 और 19 सितंबर को भारत के खिलाफ डेविस कप टेनिस के दूसरे दौर के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। भारत इस समय डेविस कप रैंकिंग में 19वें और कोरिया 16वें स्थान पर है। कोरिया का भारत के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 6-5 का है। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन सोमवार को किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला 1 दशक पहले हुआ था जब भारत ने चंडीगढ़ में एशिया ओशियाना ग्रुप 1 के मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे दौर में विजय रहने वाली टीम नवंबर में होने वाले अंतिम 8 मुकाबले में जगह बनाएगी। कोरिया 2022 और 2023 में 16 टीमों के डेविस कप फाइनल में पहुंच चुका है।
2: और प्रशांत, टेनिस की ही बात को और आगे बढ़ाते हैं। मॉन्ट्रियल में कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लेला फर्नांडीज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में रूस की

0: आंद्रीवा को 6-1, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही 23वीं रैंकिंग वाली फर्नांडीज अब राउंड ऑफ 16 में पूर्व यूएस ओपन विजेता और जापान की खिलाड़ी नौमी ओसाका से भिड़ेंगी। ओसाका ने बेल्जियम की एलिस मर्टिस को 6-1, 6-4 से हराया। इसके साथ ही फर्नांडीज ने एक साल से भी ज्यादा समय में टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज की।
1: तरमिन चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम की पहली पारी से सिर्फ 6 रन पीछे हैं। सुनते हैं जया भारती की रिपोर्ट।
2: टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 रन पर घोषित की। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बरार ने 1 विकेट हासिल किया। इसके जवाब में भारत को पारी की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में झटका लगा, यशस्वी खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान केएल राहुल के साथ 2 विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभाला। केएल राहुल 1 छक्का और 5 चौकों के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पडिक्कल ने बेहतरीन पारी खेली और शानदार शतक लगाया। पडिक्कल ने 121 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।
3: शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, दैट्स द अंडरट, व्हाट अ नॉक फ्रॉम देवदत्त पडिक्कल, बैटेड ब्रिलियंटली टुडे कमिंग इनटू द टेस्ट मैच प्रैक्टिस गेम, ही हैज डिलीवर्ड परफेक्टली। Outstanding. It's about temperament.
2: शतक पूरा करने के तुरंत बाद देवदत्त रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद पडिक्कल दोबारा बैटिंग करने उतरे। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों के साथ नाबाद 142 रन बना लिए हैं। पडिक्कल ने शतक जड़कर नंबर 3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, ऐसे में गोल टेस्ट मैच में पडिक्कल का भारत की ओर से नंबर 3 पर खेलना लगभग तय हो गया है। भारत की इस पारी के दौरान रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। मानव सुधार ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंकाई खेमे से रमेश मेंडिस और असंका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विश्वा फर्नांडो और केशरा नुआनथा 1-1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस वार्म अप मैच के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 15 अगस्त से गाल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और हम आपको बताएं कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए। सुदर्शन को यह चोट भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। भारत ए की तरफ से 2 मैच में शतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और तब से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सलेंस में चोट से उभरने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। सुदर्शन की चोट पर निगरानी रख रही खेल विज्ञान टीम के अनुसार वे श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देने की सलाह दी है। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है।
1: उधर भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स सदर्न रेप की तरफ से खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मौजूदा द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसके चलते उनका आगामी महिला 2020 एशिया कप में खेलना भी संदिग्ध है। सदर्न रेप ने आज पुष्टि की कि टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए जेमिमा की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया गया है। और श्रोता आपको बता दें कि महिला 2020 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें भारत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा।
0: और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी का मैच चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2-1 से आगे है। इससे पहले शिलोंग ने आज के एक अन्य मैच में ग्रुप ई मैच में मुंबई एफसी को 5-0 से करारी शिकस्त दी। सुनते हैं रिपोर्ट।
4: एवर ब्राइटसन साना के 2 गोल की मदद से शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी पर 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मैच का पहला गोल अभय गुरंग ने पहले हाफ के इंजरी टाइम के पहले मिनट में किया। अभी इस झटके से मुंबई की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि 2 मिनट बाद ही शिलोंग की तरफ से एक और जोरदार हमला हुआ। इस बार टेमिक्री लामुरोंग ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक ये बढ़त कायम रही। हाफ टाइम के बाद मुंबई की टीम ने वापसी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन एक बार फिर मेजबान टीम की तरफ से गोल आया। ये गोल 52वें मिनट में एवर ब्राइटसन साना ने किया। 3 गोल से पिछड़ने के बाद मुंबई की टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। इसका फायदा साना ने जमकर उठाया। उन्होंने 64वें मिनट में अपनी टीम के लिए 4th गोल किया। मुंबई की टीम गोल करने और

0: में वापसी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इरादा कामयाब नहीं हो सका। साना ने 84वें मिनट में टीम के लिए 5वां गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। इस जीत के साथ शिलोंग लाजोंग ने टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखा है और अभी तक खेले गए मैचों के आधार पर वो ग्रुप ई में सबसे ऊपर है। उधर मुंबई दोनों मैच हारकर 4 टीमों के ग्रुप में सबसे नीचे है। लैंगसिंग FC 4 अंक के साथ दूसरे और नॉन्कसे है SSNCC 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात पिकल बॉल पर। थाईलैंड के नाखोन पाथोम में एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीते। एशिया फेडरेशन ऑफ पिकल बॉल AFP की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में एशिया के कई उभरते हुए जूनियर पिकल बॉल खिलाड़ी अलग अलग आयु वर्गो में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने, बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत स्तुति और अंजलि ने की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 18 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अंजलि पोल ने अंडर 18 गर्ल्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा, जबकि आद्या और कीर्ति ने अंडर 12 गर्ल्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 एशिया में जूनियर पिकल बॉल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी प्रशांत को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा

0: कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले।

0: शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह

0: बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई

0: जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interests at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर

0: and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Smita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Asan tomorrow morning. Smita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today with a gold and a silver medal in the men's junior 60kg category. Tom Chumite won a total of 3 medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266kg. Guru Naidu Sanapati bagged 2 medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Smita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओ, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिक्शुंग लेरिम कल शाम 5:35 पर और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत कल शाम 8:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2:00 अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गियारी, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंता के सहायक श्री न्यूटन बरवा और अश्युत बर्मन के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषिका सांगे।